0: 耶！
1: 东北蜜，北北蜜，
2: 手，
1: 东北蜜，
2: 快点，妹
1: 妹，哎，东北蜜，
0: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।
3: शेख ये बात ठीक है।

0: गया।
1: रखो ना तुझ कोई भी शंका, अपने प्यार का बजा दो डंका, तेरे मेरे बीच में जो कोई भी आया दिल लगा दो लंका। छोड़ छाड़ के दुनियादारी, बस तेरे पीछे पड़ गया मैं, सपनों में तो ऑलरेडी घोड़ी वोड़ी चढ़ गया मैं, मुझको

0: साथ सच बताऊं, उस दिन गन अपने सर पर क्यों रखी?
1: पता नहीं, सिक्स सेंस, इंट्यूशन।
2: मुझे बस इतना पता था कि तुम मुझे बचा लोगे। आई बिलीव इन यू।
0: पर

हजुर को आवाज हजुर के साथ यो हो हजुर को रेडियो 102.1 MHz। हजुर को आवाज हजुर के साथ यो हो हजुर को रेडियो 102.1 MHz।